बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अर बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।

बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल।

0: का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं पर बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं
1: नहीं नहीं

0: मैं कर रहा।
1: अच्छा बेटे अब तू जाके सो जा।
0: आज मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हारे पास सो जाऊँ।
1: आओ आओ बेटे, मैं तुम्हें सुना दूँ।